0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: निफी तुम्बाना फिरे ने इंसान या मिला फ्यूमानन मिला आदि मिला फिर ऐसान अरसाइम मतुंगा नियंतु को मामुना फुलंतानुरा मैं अपिफन अंतानुरा इतुना फिरे ने ना रपिच रफका पिच आओ के ना रोट सिफोफी तक आओ के ना रोट ललोव नुल फमिला म्यूमने ना रेव मिला म्यूफने ना रेव Ardina dina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuma ntifire nenti saye na rewa mandaya ndraikitu mitiruwe na rewa mfandaisa na ndraikitu aza metzara za renyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politika marusa miafa faye na rewa antupu ndrapitu Madagascar
0: Shota tumkula, shota tumkuvavi.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: छिमी बोगे ले उलू हमारो तने लेंदा सटे माथा उछले हो ही फलो जति विरीसे ये तो ल्यारा दे आकु नेम से छिमन दे जेम से मुसारे के से सटे कुमाते लो टिविरिस्टो को सै सने सटे केरे थे मुनो उलू मलाकी हम सोफ्टो ने निगो दिन ने फसाई पमारो छको ने निगो तो आकु अविलिमुरा छिलेता ले उलम जके छिमी बोगे सटे अनसानो माथा उछले विरीसे Zezan matunga nai tarai ko matelo ni viristu di vagoga odagasikara ndinina fa atu yan simon tuliara musare